प्रयास करते हैं, जिन्हां नूं कीती हुई बंदगी उत्ते विश्वास है, वो बंदगी करके ये नहीं आखते बंदगी कीती ते मिलिया कुछ नहीं। लबों पे मुहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं, चुकदा ताला उन्हां दे बुलां उत्ते लगा है, पर अपने मन विच अपने प्यारे दा स्वास स्वास सिमरन करते ने, बंदगी करते ने। बंदगी कौन करता है? किनू उस उत्ते विश्वास है, नहीं तो किसी नूं की लोड़ है? जे विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बंदगी करता रहा, बंदगी कीती है, मिलिया कुछ नहीं। अज मस्जिद विच नहीं जाना, अज मैं नमाज नहीं पढ़नी, अज मैं इबादत नहीं करनी। क्यों इबादत क्यों नहीं करनी? कई वरे इबादत कीती है, बंदगी कीती है, जे इना चिर बंदगी करके भी कुछ नहीं मिलिया तो फिर बंदगी किन्ना चिर कीती जानी है? अपने घर विच आकड़ के बैठा है, घर विच बैठिया बैठिया वो समा आ गया, बाहर दियां दलीजां वल ध्यान पिया, दलीजां विच बड़े सत्कार नाल अपना मुंह कुत्ता उस दियां दलीजां विच रख के बैठा है। वाह बई वाह, छम छम रोण लगा, मन नूं बड़ी वड्डी सारी लानत पाई, कहण लगा ये कुत्ता है, तू इस नूं अपने घर विच रखे है, ये तां खसम वाला खवाउंदा है, तू इसका साईं खवाउंदा है, पर जे तू अपने खसम की बंदगी विच रात जागिया ते अपने आप नूं एडा वड्डा पीर सदाउणा है, आकड़ के अपने घर विच बह गया मैं बंदगी नहीं करनी, जागिया ते उसकी वफादारी विच है अपने मालक दी च, तेरे नालों ये चंगा है, तू ते रात किसी वेले सौ जांदा होवेगा, पर कुत्ता तेरी वफादारी विच सारी रात जागदा होवेगा। मन उत्ते बड़ी वड्डी ठोकर वजी, राती जागे ते पीर सदा, रात जाग के अपने आप नूं पीर सदवाउंदा है, राती जागे ता पीर सदावे, पर राती जागण कुत्ते मालक दा दर कदे नहीं छड़दे, भावे सौ सौ खावण जुते, करदा रखिया होया कुत्ता दुरकार के बाहर कढ दिंदे हां, पर थोड़े समय तों बाद उन्हूं फिर अपनियां दलीजां विच वेखते हैं, क्योंकि उस कुत्ते दा अपने मालक नाल अथाह प्यार है, उसका नमक हराम नहीं करता, जिसका खांदा है उसका हराम नहीं करता। पर इंसान जो है, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के मेरा ना चंगा बन जावे, सारा नालों उच्चा मैं बन जावां, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, सारी दुनिया का जस मैं खट लवां। पर गुरबाणी फैसला करती है, जे तिस नजर ना आवई ता वात न पुछेगी, जिन्ना चिर तू उसकी नजर थले नहीं है, उसकी छतर छाया अपने उपर नहीं मनता, उन्ना चिर कुछ नहीं है। तीर्थ वरत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जातते ज्यो कुंचर इसनान। जिवें एक हाथी पवित्र जल नाल इशनान करके मन की पूर्ति उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर मिट्टी कट्टे दियां सुंडां भर के अपने उत्ते नहीं सुट लैंदा, पौंक पौंक के रात गुजारन दिने रूड़ियां सुते, चलो बुलिया यार मनाला नहीं ते बाजी लैते, अजे जित गई तू हार जावेगा दौड़िया। आओ इन्हां तुकारां जुड़िए।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौरन गुरता।

जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाणे। तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

काची दे मानुख अब मानी इस कची दे दे हंकार च मता होया गलतियां करदा चला जावे। स्वाद बाद झूठ विच रसा विच ईरख मद माया हंकार विच ईरखा विच माया विच इन संग लाग रसन जन्म गवाया दुख भजन जग जीवन हर राया। मेरे वाहिगुरु जी तुसी इन्हां पापां दे दुख दूर करन जोग जिन्हां ने जगत नूं जीवन दिता है वह आत्मक जीवन भी बख सकदे। सगल त्याग नानक शरणाया मैनू तां इन्ना भी पता नहीं जीवन मिलिया कहदे लिए। कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया किस काम नूं तूं मैनू सिरजिया सी किस काम वास्ते मैनू जीवन मिलिया है केड़े पुन्ना करके जीवन मिल गया जन्म कवन फल पाया पावने तरन तारन चिंता मर एक निमुख ना ए मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी मेरे साहब जी असी तां एडे वड्डे गुनाहगार हां जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगतनी साधी जिन्हें जिंदगी दिती है ओनू भी कदे चेते ना इन्हें अकिरत कहन के जिसने जिंदगी श्वास खान पान भोजन पहरान सब कुछ बख्शिया है ओदा ही चेता कोई पर धन केड़े पासे मन लगा लोकां दे धन वल वेखदे आ लोकां दे सरीरां वल वेखदे आ पर धन पर तन परती निंदा बुराइयां भी लोकां दीआं वेखियां ने अपनियां नजर नहीं आई लोकां दी निंदिया करदे रह गए ते अपनियां नेकियां दीआं फड़ां मारदे रह गए अपनियां बुराइयां वल ध्यान ना कीता पर अपवाद ना छूटे लोकां नाल झगड़े करदे आ रहे आवा कौन होत है खुण खुण ए प्रसंग ना टूटे यही कारण है मेरा मुड़ मुड़ के जमना मरना बनिया होया आना जाना ते भटकना बनी हुई है कहानी मुकण च नहीं पी आ जे कर कथा होत हर संतन जिथे ता भगत जन बह के रब की गल करते ने उथे एक निमुख ना कीनो मैं तेरा मन करके तन करके पूरे तौर ते मेथों एक पल भी जुड़िया नहीं जाता मन करके मेरा उथे फेरा नहीं पै लगता टिकया नहीं जाता मैं लंपट चोर दूत मतवारे काम क्रोध लोभ मोहंकार आदक ते इन्हां दे मारे हुए जेड़े बुरे लोग ने तीन संघ सदा बसेरा उन्हां लोकां दे नाल मेरा वासा नित दा बणिया काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपे वो माही जिंदगी विच कठा मैं की कीता काम कठा कर ले क्रोध कठा कर ले माया कठी कर ले हंकार कठा कर ले दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही ए नेकी दे काम जिहड़े सुपने विच भी नहीं पए आउंदे उंज तां मैं जीवन च की कर ले नेकी ते भलाई मेरे सुपने विच भी नहीं पई आउंदी। साहिब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तां साडा शीशा बनाउण लग्गिया कमाल करती साहिब कहिंदे ने चेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डुबदे पत्थर तारे समुंदर सागर जिन्ना कु पानी नाल भरिया ए तो भी बहुते अवगुण ने साडे कदे कदे ध्यान मारदे रहिए बहुत फर्क पै सकदा। साहिब पंचम पातशाह कोल पिशावर दी साख काबल दी संगत आई सी सूबा सरहद दी संगत आई सी एक सिख ने उठ के बेनती की साहिब जी गलतियां बड़ियां गुनाह बड़े हो जाते साहिब कहन लगे फिर की होया कहन लगे महाराज किवें बख्शे जावांगे साहिब कहन लगे इस तरह करो जो अगले साल आओगे ना पूरे साल का हिसाब करके लिया है जेड़ी गलती ते गुनाह हो उहदा भी हिसाब कर लेना लिखी जाना नाल उहदा जेड़ा पुन कर्म करो चंगा कर्म करो भी लिखी जाना चले गए साल बाद आ गए महाराज ने पूछिया याद कराया क्यों भाई गुरमुखो तुसा एक सवाल कीता सी ते असां तुहानू कहा सी कि अपनियां वहियां बनाओ खाते बनाओ बाप दे ते पुन दे तुसी खाते बनाओ खाते बनाए ने कि महाराज बनाए दसन लियाओ फिर विखाओ कि महाराज लियांदे कोई नहीं क्यों नहीं लियांदे कि महाराज लिखिया ही कुछ नहीं सी होया विच कमाल है भाई तुहानू लिखण नू कहा सी तुसा वहियां ते खाते बनाए लिखिया क्यों नहीं कि महाराज गल ए है कि जिसले गुनाह कीता लिखण लगे ते सोचिया भी उथे महाराज दी हजूरी च संगत च पढ़ के सुनाउणा पैगा नंगे हो जावां शर्म आ गई लिखण तो शर्म आ गई नहीं लिखिया महाराज कहन लगे फिर पुन कर्म भी कोई नहीं कीता पाप कर्म तां लिखण लगिया शर्म आ गई कि महाराज मेरी शर्म नहीं आई पढ़ के फिर करन लगिया भी शर्म आ गई कि जे तां करांगे ते लिखणे पैणगे महाराज दा हुक्म है जे लिखांगे ते सुनाउणे पैणगे नंगे हो जावांगे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਲ ਭਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਜੇ ਲਿਖੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੋ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਲੁਪਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਆਂਦਾ ਸਲਾਇਆ, ਹਰ ਕਮ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਪੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ

सारे संसार नु जाके वरतावा और संसार दे लोग तेरा नाम जप के तेरे विच अभेदता प्राप्त करन। उस वेले गुरु नानक नु करता पुरख वाहिगुरु ने एक खजाना बख्शिश कीता, ऐसा अमूल खजाना ज्यो ज्यो इस नु खाओ खर्चो ए वधदा जांदा है। गुरबाणी दा खजाना, नाम दा खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे तो

ते राय सोचन लग्या के कितना समा पाके कालू जी दे घर माता त्रिपता दे घर आ लाल पैदा होया सी, लेकिन आज लगदा है के सब ने इस नु डस लिया। हा वही जाके कोई खबर

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई, मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए, आवाज दित्ती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया, ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां, लेकिन दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने। गुरु नानक पातशाह खड़े, आख्या बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने एही कहंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी, तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नूं मिल जेड़ा, ओ जंगल विच बन हेठा बैठा, गुरु नानक गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदे, कदे इस पासे मुंह करके बैठे। सोचदा खबरे इथों ना आ जाऊं, फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रिया ते पिछों आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता, चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी, ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हन की कह।

तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंग है, टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है, फिर क्यों ना

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन नू चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे है। कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नू सिखां नू फड़िया, जोर दी झटका मारिया। साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आग्या दिओ, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पुराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दीआं ताकतां कित्थों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहंदे ने, भाई पुराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दीआं ताकतां तेरे कोल आईआं ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पुराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पहरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है, वाहिगुरू मुंहों निकलदा है।

झूठी हो सकती है पर थोड़ा झूठी नहीं हो सकती। सोना सुच्चा है, हाथ सुच्चा है, ना बन जा।

0: बाबा जी डाकू है सुन इधर बहुत आवाज आ रहे थे, चलो पीछा करो।
1: संग जी तनु हैरानी हो रही है दौड़िया मैं जो कुछ भी कीता इसलिए कीता कि तू आदमी पैरा नहीं, हालात ने तेन पहले गर्म करने मजबूर किया होगा। देख ले इन्हें दौलिया जिन्हें साथियों ने तेन एना मान सी तेन अकलिया छड़ के नस गए।
2: तुस आज मेरी अखा खोलते सच जी
1: दौले खां तेरे अंदर वो खूबियां ने जिन्हों सही राह से लगावे तो एक महान इंसान बन जाएगा।
2: महान इंसान यह किस तरह हो सकता है, मैं तो हरिया किन्नियां ने खून न हाथ रंगे किन्ने जुल्म किए ने।
1: परमात्मा बख्शन हार है, ऐसा ना लैन नाल तेरे अंदर एक जागृति आएगी, फिर तू दौला डाकू नहीं दौलत खां फकीर रखवाएगा। याद कर खुदा नू पढ़ करना
2: कलमा। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैं कि जाना कलमा की हुंदा है सब।
1: अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। बोल या अल्लाह
2: या अल्लाह
1: या अल्लाह
2: या अल्लाह।

हर हर गाई। कुलिया कर्म कृपा भई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई। हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने कीर्तन दी

कीर्तन हर हर गाई। कीर्तन ने ऐसा रंग चाढ़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने पई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया। पर खुलिया किवें? मालक दा कीर्तन गाउण नाल।

पहला मार्ग पहला रास्ता पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारे आ कदी मच्छी नू देख लै उदा पानी नाल किन्ना प्यार है उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। साहिब कहिंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा। साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह किते, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

आदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धर्मगुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने, मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे

गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पबीए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़ जावे।

हथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नु प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दियां पैड़ां गुरु नानक ने छड़ियां ने। तुसा वेखिया है कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे इधर उधर झाकदा है, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा है। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसने तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाएगा, जिसने हजारा लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाएगी। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते इक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाब तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिल के गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बड़ी बड़ाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जेड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा है या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदे ने

0: जित्ता जित के कायम सिख राज कीता, चंडा केसरी लाहौर चुला दिता। जी दी बात ने बेअफगान पौदे नौ जग दे विच चमका।
1: गुजरा वाले दी धरती 1791 दा पागा परिया दिन
2: सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता तरन कौर दी कुखों जन्मिया सरदार हरी सिंह नलुआ।
1: 7 साल दी उमर विच ही पिता दा साया सिरो उठ गया। नानकियां दी निगरानी विच हरी सिंह ने शस्त्र विद्या ते कोल सवारी विच निपुणता हासिल कीती। कुछ सालां विच ही चंगा योद्धा बन गया।
2: शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने एक दिन हरी सिंह नलुए दी वीरता दे करतब देखे ता अपनी फौज विच भर्ती कर लिया।
1: दिना विच ही तरक्की कर हरी सिंह शेर दिल रेजिमेंट दा सरदार बन गया। शेरे पंजाब दे जरनैल खालसा राज दे थम जरनैल हरी सिंह नलुए दिया गल्ला कर इंज होन लगिया।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया। तलवारा पिड़िया।

पेश बदल किले विचो निकल तुरी रातो रात पेंडा मुका पिशोरच सरदार हरि सिंह ललुएनू जा चिट्ठी पुचाई पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है ओ उठ बैठा खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है मैं जान नालो सिखी शान नू प्यारी समझदा हां ऐ सोच दिया ही चट सिंगा नू इकट्ठे कर सरदार हरि सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: सरदार हरि सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरि सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछो घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, उसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इस नूं वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जिहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिया, पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिया हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो

सारी दुनिया नाल रुस के कोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इथे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां, क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदा है। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वल तुर पिया।

शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे याग हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्होंने दशक प्रजापति का सिर वढ़ के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलोह आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण की, शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया अपने अलेटां विचों।

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनिया फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, ओ नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वो नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुणिया गया। बचाना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हाल चला दियो, इस शहर नू मिट्टी च मिला दियो। देखदियां देखदियां बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल

प्रभु दे विछोड़े दा डंग लग जाए। कबीर जी कहंदे ने लाजमी ओ बंदा मर जाए, पर विछोड़ा महसूस होवे से पखंड ना करदा फिर। मरण का मतलब है अपने आप नू जिंदा ही मार छड़ना। जिसनू आख्या मोह मरने का चाव, वो कोई शरीर त्यागण वाली गल नहीं, पर हो सबन की रेंड कर, सारयां दी रेंड बन जाना। इतना अपने आप नू मार छड़ना। तो कबीर जी आखदे ने अवल ते मनुख जिंदा रह ही नहीं सकता, पर जे सियाणा बनिया होए ते फिर उसदा ते कोई इलाज नहीं, कोई गल नहीं। पर कबीर जी एक गल होर आखदे ने, जे जिंदा रह भी जाए

रोज अरदास करदा सी है परमात्मा आओ मेरे हृदय दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कहन लगे खोल भाई बुआ तेरे हृदय दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया इस हृदय दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई

आया, क्रोध दी बांह फड़ी, बाहर छड़ आया। फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलो फड़ के बाहर छड़ आया। जा मुड़ वेख दे, क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बांह फड़ दे, बाहर छड़ आंदे। फिर अहंकार नू बाहर छड़न आंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बार अंदर सारिया नू कढ़दा रहा, एक एक नू कह लगा निकलो, मैं परमात्मा आ गए उनू बिठाने। ओ कह लगे, ओ परमात्मा ते तेरा अज आए, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, तेनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा, तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है, तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

कर काम। सिमरन तो बिना ये इंसान नहीं काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून कोबरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आप बिना सिमरन तो खोता बने खड़े।

सदका का सारा उत्साह है, जिसके सदके आज ये रूहानी चेहरा, आज ये सरदारियां आ जाती। गुरु अर्जन देव पातशाह का जन्मदिन मना रहे हैं, तो किन्नी कृपा ए गुरसिखां उत्ते होई। अज उस पासे वल झाती मारिए, अब पता लगता है जे ओ विश्वास रखण वाले अज गुस्से होके ना चले जांदे, ते अज सोहणियां दाड़ियां वाले सरदार गुरबाणी ना गायन कर सकते। पर वाहिगुरु ने यह दातां बख्शणियां सी, यह उहदी बख्शिश है जिसकी बख्शिश द्वारा असी कीर्तना विच दीवाना विच जाके जे कोई गायन नहीं कर सकता तो सुनता तो है ना, काव ते सुनते भी उतरे मिनते बात करे।